0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सिर्फ अब प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altire Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Digestion Cool Tips with Dabur Pudin Hara.
1: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हेवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा, योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ.
0: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:06।
1: Bollywood.

0: Oji, good morning. It's a Tuesday morning, 25th of August. This is the show that gets you up and running. It's called The Big Breakfast with me, Sid.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Are you 33 years old yet? I mean, there's a reason that I'm subay, the first thing that I'm saying is talking about age, because this kind of showed up on my feed, and that is that बहुत सारा रिसर्च हुआ इस मामले में और इतने सारे रिसर्च और गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपका जो म्यूजिक टेस्ट है ना वो 33 पे फ्रीज हो जाता है. यू स्टॉप लिसनिंग टू न्यू म्यूजिक आफ्टर द एज ऑफ 33. नाउ आई एम वे पास 33 एंड आई स्टिल कीप डिस्कवरिंग न्यू म्यूजिक. आई डोंट नो वेयर ऑल दिस रिसर्च कम्स फ्रॉम, बट अगर आपका, इफ यू कैन सपोर्ट दिस थियोरी, अगर आपका भी म्यूजिक टेस्ट फ्रीज हो गया है सुबह सवेरे, जब तक कोई गाना आप सुन नहीं लेते तब तक आपकी सुबह नहीं बनती है, देन यू नीड टू गेट इन टच विद मी. 0543, आई मेड इट साउंड लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ अ डॉक्टर, राइट? बट नो, आई एम गोना बी प्लेइंग आउट दैट सॉन्ग फॉर यू. व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट रियली गेट्स यू इन द मूड टू फेस द ब्रांड न्यू डे एट वर्क? 0543091062 इज द व्हाट्सएप नंबर. कुछ देर में कमिंग अप. ऊंचा लंबा कद नहीं, ऊंचा लंबा कद फॉरएवर. From Welcome to the Jungle. By the way, it's known as taste freeze. Iska ek naam bhi hai, this entire phenomenon. Ki 33 pe aapka music taste freeze. It's actually called taste freeze. More such anap shanap oot patang baatein coming up right here on Big 106.2, a part of the Funny Share Network. Big.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
4: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
5: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ie.
3: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड मॉर्निंग, इट्स 7:24 ऑन द क्लॉक ऑन दिस ट्यूसडे की सुबह। 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, नाइस एंड सनी एज एक्सपेक्टेड। ह्यूमिडिटी एट 66%, विंड्स ब्लोइंग एट जस्ट 11 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 39, लोज ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Right, it is 8:11 on the clock on this Tuesday ki subah, and there's something quite amazing that is going to come up. And if you need an evening to slow down, क्या होता है कि वीकेंड पे बहुत सारे प्लान बनते हैं, you know, हमेशा मस्ती धमाल से थोड़ा सा हट के भी प्लान बनाने चाहिए आपको, क्योंकि स्लो डाउन अनवाइंड करने का अगर आपको मौका चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर यू. ऑन द 29th ऑफ ऑगस्ट, जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप ख्याल टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद द शो धक धक. यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट पोएट्री, सोल स्टरिंग स्टोरीज, वार्म चाय एट जेम्स अल बर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो स्टार्ट्स एट 5:30 PM एंड टिकट स्टार्ट एट 199 दिरहम्स, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग high tea and free parking as well. And this is a chance for you to win 2 tickets for this unmissable show. All right, so main aapko sunaunga 3 gaane by one of our favorite singers, 3 romantic gaane main aapko sunane wala hu, and all 3 of them have been sung by the same artist. All right, all 3 of them have been sung by the same artist. Aapko mujhe batana hai ki artist kaun hai. Okay, are you ready? The first song is this one. Lemon.

And song number three is this one. नहीं, ये तो पूरा गाना बज गया. मैं आपको एक और गाना सुनाता हूँ इनका. इफ यू फिगर आउट बाय द वे हु आई एम टॉकिंग अबाउट, देन गिव मी अ कॉल राइट नाउ. 800-1062, दैट इज द नंबर. 800-1062 पर बताइए कि कौन है ये जिसके मैंने आपको दो गाने सुनाए हैं और तीसरा है दिस वन.

0: It's quite literally the opposite of these kinds of songs this Saturday.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: मतलब चिकनी चमेली तो डेफिनेटली आपको नहीं सुनने को मिलेगा, बट इट्स एन इवनिंग टू स्लो डाउन अनवाइंड एंड 29th ऑफ अगस्त जिक्र ब्रिंग्स इंडिया सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप ख्याल दुबई आ रहे पहली बार विद शो धक धक. यू कैन एक्सपेक्ट पोएट्री, सोल स्टरिंग स्टोरीज, वार्म चाय एज वेल. जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल, डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो स्टार्ट्स एट 5:30 PM एंड 199 दिरहम्स की टिकट्स अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग. अगर दो टिकट्स आप जीतना चाहते हैं, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. तीन गाने मैं आपको सुनाऊंगा बाय द सेम सिंगर, टेल मी हू दिस इज.
2: पहली नजर में
0: ये मेस्मराइजिंग मैजिकल आवाज किसकी है? अगर आप जानते, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. सॉन्ग नंबर टू, डजंट गेट एनी सिंपलर देन दिस, ऑल्सो डजंट गेट एनी मैजिकल, मोर मैजिकल देन दिस. फाइनली सॉन्ग नंबर थ्री, वन ऑफ माई फेवरेट.
2: कुछ इस तरह तेरी पलके मेरी पलके.
0: To win two tickets for this unmissable evening, Amandeep Khayal in Dubai for the first time. Show's called Dhak Dhak. Brought to you by Zikr. So 800-1062 pe call karo.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: कुछ लोग होते हैं जिनका नाम तो बहुत ही पोएटिक होता है, लेकिन they have nothing to do with poetry.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: चलो डॉक्टर शाइस्ता से पूछते हैं कि उनके केस में कैसा है. डॉक्टर शाइस्ता, what a nice and poetic name यार, वाह, मतलब it is just amazing. Good morning.
2: Good morning. Thank you so much.
1: आप do you do a bit of poetry yourself? But I don't kind of associate poetry with doctors.
2: जी, बिल्कुल. यंगर डेज में करते थे, जब वी वर यंग एंड वी वर लर्निंग, वी यूज्ड टू कनेक्ट विद पेशेंट्स, बच्चों के साथ तो काफी कुछ कर लेते थे.
1: पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाइस्ता. तो ये बताइए कि जब आप बचपन में शेर शायरी वगैरह करती थी, किसी को कभी आपने लिखा होगा चिट्ठी, तो उसमें आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है कि खराब होती है? बिकॉज डॉक्टर्स हैव हॉरिबल हैंडराइटिंग. तो ये डॉक्टर बनने के बाद की बीमारी है या पहले से ही है?
2: आई थिंक इट्स अ मिथ. डॉक्टर्स की राइटिंग बहुत अच्छी होती है. हाँ. नहीं तो हमारे एग्जाम में कोई पास ही नहीं होते थे. हाँ. तो इट्स जस्ट अ मिथ की राइटिंग अच्छी नहीं होती है.
1: मैंने तो सुना कि अगर राइटिंग अच्छी हुई तो वो डॉक्टर खराब होते हैं, ऐसा नहीं है?
2: That's not true at all. आजकल तो सब कुछ टाइप होता है, तो फिर हैंडराइटिंग का सवाल ही नहीं है.
1: अच्छा, वेरी नाइस है. दैट इज आल्सो ट्रू यार. वो चले गए दिन यार, कि मतलब आप गए फार्मासिस्ट के पास, ना आपको समझ में आ रहा है ना फार्मासिस्ट को समझ में आ रहा है कि उसपे लिखा क्या है. Right,
2: exactly.
1: So Dr. Shaista, since you said you're into poetry, this is going to be an amazing evening, unmissable for you. Maine last time kuch behad romantic gaane sunaye the, three of them. One of them was this one.
3: Pehli nazar mein kaisa jadoo kar diya.
1: The second one was this. Very very simple, can't get any easier than this. Ye singer ka naam bataiye.
2: That's one of my favorites, Atif Aslam.
1: Absolutely correct. Atif Aslam is the correct answer. And if you enjoy these kinds of songs, if you enjoy Sher o Shayari, this is going to be an absolutely amazing evening for you. Amandeep Khayal aane wale hain for the first time. Zikr brings to you Dhak Dhak, and he's India's celebrated storyteller. So wahan par aap jaiye, do tickets aapko mubarak ho. Gems Albarsha National School pe, doors open at 4:30, show starts at 5:30.
2: Thank you so much. It was so nice talking to you.
1: Thank you so much. And that is Dr. Shaista, winner hain. And roz subah ye contest hum log khelne wale, in which kuch ek singer ke bare mein, ek romantic kuch gaane mein play karunga. And I'm going to ask you about the singer. And don't forget, this evening is happening on the 29th of August. Zikr brings to you Amandeep Khayal in this show called Dhak Dhak. And the show starts at 5:30 p.m. Gems Albarsha National School. And tickets are available exclusively on District. And the tickets include high tea and free parking for just 199 dirhams.

0: फ्रॉम द फिल्म धुरंधर द रिवेंज। नहीं मैं वारी जावा, ये तो वारी को वारी जाने दो, हम लोग चलते हैं जर्मनी। नहीं मैं जर्मनी जावा।
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG, travel partner AFC Holidays, exclusively on Big 106.2.
0: राइट अब अगर आप हम आपको जर्मनी लेकर जा रहे हैं तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना। अभी तक व्हाट्सएप किया कि नहीं आपने? ऑल यू गॉट टू डू इज बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम टाइप करो, बिग चेक इन स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप इट राइट नाउ टू 0543091062, दैट 0543091062 फॉर एन अनमिसेबल अपॉर्चुनिटी टू हेड आउट टू जर्मनी इन द बिग चेक इन। स्पीकिंग अबाउट यूरोप, Cocktail 2 से माशू का coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me. Sid, good morning.

0: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: हाई स्पीड ऑटोबान, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक।

0: जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज्ड कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
1: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
2: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: It is 8:46 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. यहाँ पर आपको हल्का बुल्का traffic का मिलने वाला है E22 पर and this is going towards Sheikh Zayed Grand Mosque. And then there's also E20 पर as you get out of Sector 13 Khalifa City, a bit of congestion around Rabdan area also you'll find. इसके अलावा एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी क्वाइट स्मूथ गोइंग। चलते हैं दुबई शारजा की ओर। द यूजुअल डीएससी दुबई साउथ हेडिंग नॉर्थ ऑन 311, देन देयर इज आल्सो द जंक्शन ऑफ 311 एंड 44 अराउंड जेबीटी, देन 61 हेसा स्ट्रीट पर आज एट E44 हेडिंग टुवर्ड्स बर्षा हाइट्स, यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन देयर। स्पीकिंग ऑफ E44, आपको अलकूज 4th से 1st के बीच में स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा एंड दिस इज हेडिंग नॉर्थ। Yeah, and then in the same direction heading north, E66 per, you'll find traffic getting out of Al Jadda going towards E11.
2: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:10।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: न्यूरल सिस्टर्स विद पटाका गुडी, फिल्म का नाम हाईवे, लेकिन जहां पर हम जा रहे हैं इनको हाईवेज नहीं कहते, इनको कहते हैं ऑटोबान।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: यस, वी आर हेडिंग आउट टू जर्मनी इन द लेटेस्ट सीजन ऑफ द बिग चेक इन। I've got Shivani with me on the phone line. Good morning. Oh, sorry. Guten Tag, Shivani.
2: Hi. Hello.
0: She is in a very professional place right now. Kaam pe thi, and you kind enough. I think you stepped out to what, the pantry, the lift lobby area, where?
2: Yeah. To the pantry actually.
0: आप क्या काम करते हो और वहाँ पर कितनी German engineering use होती है, बताओ?
2: Honestly, I work in planning in Shaloop Group. And German engineering ka to pata nahi, but we do have a lot of watches, brands that we sell. So yeah.
0: That's nice. You can't be a company and kind of escape anything, something German or the other, right? And
2: agree.
0: How excited are you? Are you a traveler? Are you not a traveler? When was the last time you went to Europe?
2: Travel. Not Europe. Honestly, I've never been to Europe, but I went to Georgia recently. So,
0: कभी आपने मतलब शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई भी नहीं किया?
2: नहीं, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया।
0: A great new adventure awaits, Shivani. But yeah, we're going to make that process very, very easy because, chalo, achha, if there's a way to start exploring Europe, it is with Big 106.2 in the Big Check-In. So, here's what's going to happen, Shivani, okay? Let's get down to business. मैं आपको ना एक डायलॉग सुनाऊंगा, लेकिन नॉट बिफोर वी हेड आउट टुगेदर, शिवानी, यू एंड आई, टू द वंडरफुल जर्मनी। हम लोग जर्मनी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं बाय काइंड ऑफ हेडिंग आउट टू जर्मनी। आई एम गोना सेट द सीन अप अ बिट, राइट? दिस कॉन्टेस्ट इज कॉल्ड गुटन टाग दिलवाले, ओके? सो एक रोमांटिक सेटिंग में पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा, उसके बाद एक डायलॉग भी सुनाऊंगा, और अगर आपने पहचान लिया कि कौन सी फिल्म का यह डायलॉग है, देन योर नेम गोज इन टू द ड्रॉ, राइट?
2: ओके,
0: आर यू रेडी?
2: Yes, I am very excited.
0: So the setting is, Shivani, कि आप और मैं, हम लोग हैं in the wadis of Germany, snow falling softly outside the Neuschwanstein castle, and two people look into each other's eyes, और उसके बाद जो चीज कही जाती है वो है
3: प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता।
0: बताइए कौन सी है ये फिल्म?
2: कुछ कुछ होता है।
0: व्हाट अ साइ, आई कैन हियर द साइ ऑफ रिलीफ यार, क्योंकि जब मैंने कहा फिल्म पूछूंगा तो आप इतनी नर्वस हो गई थी। कुछ कुछ होता है करेक्ट आंसर। Congratulations, Shivani.
2: Thank you so much.
0: You might be heading out to Europe for the very first time. We are so excited for you. Yeah, your name goes into the draw.
2: Yes, thank you.
0: And you know, this draw is going to happen. अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, but in the meanwhile, keep your fingers and everything German, all the German watches etc. all crossed, because अगर आपका नाम इस ड्रॉ में से निकल गया, you'll be heading out with us in the latest season of Big Check-In to Germany. Congratulations.
2: Thank you so much.
0: That is Shivani, इनका नाम चला गया draw के अंदर। ये it's as simple as that. We kind of set the scene, take you to Germany before asking you a very very simple question. अगर आप भी if you want to take part in Guten Tag Dilwale, that's the name of the contest. I don't know why I turned like this while saying Guten Tag. Guten Tag Dilwale में अगर आपको पार्ट लेना है तो क्या करना है आपको शिवानी की तरह? Type out Big Check-In space देकर अपना नाम, या Big Check-In space your name and WhatsApp that. There's still a lot of people who are SMSing नहीं, WhatsApp कीजिए 0543091062 पर।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: 1 + 1 = 3.
2: That's not right.
1: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
2: Really? And these 4 designs to choose from?
1: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
2: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
3: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with 0 penalty on early returns.
2: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
4: Experience an unforgettable evening as Gaggan with Gull brings you Jadoo, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.
0: The Big Breakfast, brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
5: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
6: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank, and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. TNC Supply.
0: The Big Mix. Miss Kiya Gaya.
7: कर ही नहीं सकते, चाहोगे तो नहीं कर सकते।
8: हाय प्रणव, कितने बड़े फूडी हो, कितना रेट करोगे खुद को 1 to 10 में?
9: 11.
8: ओके, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। ओके, वी गोना स्टार्ट विद द गेम। आई एम गोना गिव यू 2 चॉइसेस और आपको बताना है कि आप इन कौन सी डिश चूज करोगे, ठीक है?
9: डन।
8: ओके, समोसा या वड़ा पाव?
9: समोसा।
8: ओके, समोसा या डोसा?
9: समोसा।
8: समोसा या राजमा चावल?
9: आई थिंक राजमा चावल।
8: ओके, राजमा चावल या पास्ता?
9: राजमा चावल।
8: राजमा चावल या भल्ला पापड़ी चाट?
9: आई थिंक भल्ला पापड़ी चाट।
8: ओह, देखा, बदल गए ना राजमा चावल, बदल गए। आई सी देयर अ लॉट ऑफ पीपल जो समोसा फैन है, आई एम वन ऑफ देम। आई विल नॉट रेट यू एज अ फूडी, इट्स ओके, यू आर एक्चुअली 11 ऑन 10। थैंक यू, बाय। इफ यू थिंक यू आर अ बिगर फूडी देन प्रणव, ऑल यू हैव टू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर एंड वी विल सी इफ यू आर a bigger food.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
10: It is 9:35 on the clock and let's take a look at 311. Subah se bahut zyada traffic aur वे अप नॉर्थ साउथी जर्मन हॉस्पिटल से अजमान में ये ट्रैफिक शुरू होता है। वहाँ पर एक इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड सिंस दिस मॉर्निंग एंड देन ऑल थ्रू सेफ जोन सिटी सेंटर जाइया से होते हुए टिल ऑल द वे ऑलमोस्ट टिल सिटी सेंटर मिर्दिफ, यू विल फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक। स्पीकिंग ऑफ सिटी सेंटर मिर्दिफ, मोहिसना से हेडिंग नॉर्थ ऑल्सो ऑन 311 यू विल फाइंड 4 से 5 मिनट की देर। देन देयर इज द यूजुअल D62 अल नादर इंटरचेंज 1E11 पर यू विल फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स देरा फ्रॉम शारजा एंड यहाँ पर आपको मिलेगी कुछ 11-12 मिनट की देर। आज E88 इज ऑल्सो क्वाइट कंजेस्टेड, 10 to 11 मिनट का डिले एंड दिस इज हेडिंग ईस्ट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो बी प्रिपेयर्ड। आज E88 पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है। इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल, 800-1062 इज द नंबर।
0: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव। रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट विद 0 पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स। बिग 106.2।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: 1 + 1 = 3.
3: That's not right.
2: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
3: Really? And these 4 designs to choose from.
2: Yes, really. There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
3: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
4: School's starting soon and we need a car.
5: Books, uniforms, everything.
4: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
4: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
1: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
7: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
1: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक.
2: गुड मॉर्निंग. 10:07.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. insurancemarket.ae.
2: Big cash and big ticket.
3: 15 million dirham grand prize.
2: Win up to 1 million dirhams with big spin.
3: Plus 5 consolation prizes.
2: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Listen to her every day.
5: Mugambo. Khush hua.
6: Hi Zameer, good evening.
7: Hi ma'am, how are you?
6: I am good, how are you?
7: Good evening, very good evening. Just missing my wife.
6: Missing your wife?
7: Yes.
6: कहाँ गई
7: हो?
6: अरे अरे अरे मोहब्बत हो तो ऐसी ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
7: अरे सच्ची में आ रही है, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है।
6: ओए होए कितने महीने हुए आपकी शादी को?
7: तो शादी को तो 5 साल हो गए।
6: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? उफ, फिर तो यार ये तो अलग ही आशिक की अलग ही मोहब्बत है। लव मैरिज थी?
7: नहीं अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई।
6: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार। 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
7: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं।
6: अच्छा, आपने
7: सीधी बात,
6: लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है आपकी? हाय दैट्स रियली सैड, बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ।
7: यस आई एम ट्राइंग टू।
6: हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो कितने फोन लगाते हो दिन में, कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया
7: करता ही रहता हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं करता।
6: वो उठाती ही नहीं उठाती
7: नहीं। वो उठाती है लेकिन उसकी वो मुझे कभी कभी इरिटेट हो जाती है क्योंकि मैं हर टाइम कॉल ही करता रहता हूँ उसको।
6: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर, 2-3 दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान हो
7: जाएगी। साथ यही हो रहा है।
6: नहीं नहीं नहीं, अपने आप परेशान हो जाएगी। मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ, थोड़ा 2-3 दिन कॉल मत करो, जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
8: It is 10:26 on the clock. And of course, the superstar of traffic this morning has been 311. अभी क्या हाल है? और अभी भी अभी जस्ट शोज नो साइंस ऑफ सेटलिंग दिस ट्रैफिक ऑल द वे फ्रॉम सऊदी जर्मन हॉस्पिटल अजमान टिल सिटी सेंटर मिर्दिफ। एक्चुअली ये बढ़ता ही जा रहा है ये ट्रैफिक। इनफैक्ट अब इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑल्सो यूल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन सिटी सेंटर मिर्दिफ से। जैसे आप नॉर्थ जाएंगे यूल फाइंड 4-5 मिनट की देर, लेकिन एक घंटे का डिले अभी भी है हेडिंग साउथ ऑल द वे फ्रॉम अजमान टिल सिटी सेंटर मिर्दिफ ऑन 311। हो सके तो इस रास्ते को आज अवॉइड ही करें। देन शारजा गोइंग टुवर्ड्स दुबई अलनाद इंटरचेंज 1 के आसपास भी आपको मिलेगी आधे पौन घंटे की देर। E11 इज ऑल्सो क्वाइट बिजी एंड देन देयर इज E88 एज वेल, यहां पर भी कुछ 11 से 15 मिनट की देर। एंड दिस इज हेडिंग ईस्ट गोइंग टुवर्ड्स शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
9: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: Hollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
2: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: All right, I give up. It is one of those Tuesday mornings jahan par the traffic just does not show any signs of slowing down. 56 minutes ka delay, almost 1 ghante ka delay abhi bhi hai on 311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road, and this is right outside Saudi German Hospital in Ajman, all the way till city center Mirdif, and then in the opposite direction also Mirdif city center se jab aap north jayenge Moesna ki taraf yahan par aapko 5 se 7 minute ki der bhi milne wali hai. Al Nader interchange 1 is also very very busy aaj, in fact all the way from even further north Sharjah, वो इससे स्मॉल शारजा से भी नॉर्थ एट द जंक्शन ऑफ E88 ऑल्सो, वहाँ से ट्रैफिक शुरू होकर देरा तक आपको ट्रैफिक मिलने वाला है. एंड देन टॉकिंग अबाउट E88 हेडिंग ईस्ट गोइंग टुवर्ड शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल्सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 7 मिनट की देर. थिंग्स आर लुकिंग मच मच बेटर देयर. आधे घंटे की देर थी अराउंड 15-20 मिनट्स अगो. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062.
2: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: Ranveer Gassi with Coca. If you're not a Punjabi like me, then you are actually waiting for him to say cola. Bhai, please say cola, please.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: All right, on that note, it's time for me to say goodbye to you. Lekin yaad rahe, the show is brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. The Big Breakfast with me, Sid, every weekday from 7 to 11. You can cover your grey hair in just 5 minutes with Henna Speedy Easy Hair Color. That's made in Italy. Ammonia-free formula iska hai. Enriched with henna extracts and argan oil gives your vibrant, natural-looking color. Works beautifully even on thick hair, delivering easy, even application. The Easy Comb Applicator makes coloring as simple as combing your hair. Get maximum grey coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy. On that colorful note, I'm going to be taking your leave. Don't forget to follow us on socials. We are 106.2 Big FM. Wahan par bahut sara behind the scene action, some wonderful poll questions for you to answer, and all that and much more on 106.2 Big FM. That is our Insta handle. I'm Sid Seth, SIDSETH. Gonna see you tomorrow morning sharp at 7. Till then, enjoy the rest of your Tuesday. Bye bye.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिड, सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स, वीकडेज 1 to 5 PM, ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 dirhams, इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
3: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Girl. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Dabur Pudin Hara, just one tiny pearl, packed with Ayurvedic mint oils, gives your stomach instant soothing relief. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हाय प्रणव, कितने बड़े फूडी हो, कितना रेट करोगे खुद को 1 to 10 में?
3: 11.
2: ओके, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। ओके, वी गोना स्टार्ट विद द गेम। आई एम गोना गिव यू टू चॉइसेस और आपको बताना है कि आप इन कौन सी डिश चूज करोगे। ठीक है?
3: डन।
2: ओके, समोसा या वड़ा पाव?
3: समोसा।
2: ओके, समोसा या डोसा?
3: समोसा।
2: समोसा या राजमा चावल?
3: आई थिंक राजमा चावल।
2: ओके, राजमा चावल या पास्ता?
3: राजमा चावल।
2: राजमा चावल या भल्ला पापड़ी चाट?
3: आई थिंक भल्ला पापड़ी
2: चाट। ओह, देखा, बदल गए ना राजमा चावल, बदल गए। I see there are a lot of people जो समोसा फैन है, I am one of them. I will not rate you as a foodie, it's okay. You are actually 11 on 10. Thank you, bye. If you think you are a bigger foodie than Pranav, all you have to do is call करो मुझे 800-1062 पर and we'll see if you are a bigger foodie.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5pm. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.
4: Hey girl.
5: Hey boy.
4: Would you be my baby doll?
5: Sure.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग। अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It's 39 degrees out there, लेकिन of course it feels hotter than the actual temperature. It's okay, पानी पीते रहो, अपना ध्यान रखो।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दृश्यम 3 द कंक्लूजन आने वाली है. क्या डेट होगी यार, मतलब कितना ही मुश्किल सवाल मैंने पूछ लिया. किस डेट को रिलीज हो रही होगी दृश्यम 3 द कंक्लूजन? ऑफकोर्स यार 2 अक्टूबर. इसी साल 2 अक्टूबर को पार्ट 3 द ऑफिशियल कंक्लूजन जो है अनाउंस हो चुका है रिलीज होने के लिए. ऑफकोर्स इट्स द फाइनल चैप्टर. जो पहली फिल्म थी दृश्यम 1 पर अगर हम वापस जाएं, इट वॉज बैक इन 2015. इट वॉज अ स्लीपर हिट, लेकिन फिर भी उसने 110 करोड़ वर्ल्ड वाइड रुपीज में कलेक्ट कर लिया था. दृश्यम 2 2022 में आया. ऑफकोर्स द फ्रेंचाइजी था वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ अजय देवगन करियर. आई एम टेलिंग यू,
3: बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना.
2: वेल, इस बार विजय सलगांवकर जो हैं कितना सोचेंगे और किस हद तक सोचेंगे पता लगेगा 2 अक्टूबर को. बट विद दैट, अजय देवगन इज बैक एज विजय सलगांवकर विद तब्बू, श्रिया सरन एंड रजत कपूर. डायरेक्टर अभिषेक पाठक भी वापस आ चुके हैं विद प्रकाश राज एंड जयदीप अलावत, जिन्होंने फ्रेंचाइजी एज न्यू रोल्स ज्वाइन करा है. देखते हैं हाउ इट गोज. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2.
1: लेकिन जो इनकी कास्ट है दैट इज वेरी इंट्रीगिंग, अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान. क्या इन दोनों को, इस डुओ को आपने पहले किसी फिल्म में देखा है? मुझे तो याद नहीं आ रही है लास्ट कौन सी फिल्म थी इनके साथ में. बट हैविंग सेड दैट, अक्षय कुमार और प्रिया दर्शन का डुओ भी वापस आया है. द लास्ट इट केम वॉज भूत बंगला. ऑनेस्टली मुझे वो मूवी बिल्कुल अजी नहीं लगी थी, लेकिन क्योंकि ये वाली जो है एक मलयालम थ्रिलर ओपम जो 2016 में रिलीज हुई थी उसका रीमेक है, ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, एंड सैफ अली खान है, अंधाधुन जैसी प्लॉट है, क्राइम थ्रिलर है, आई थिंक सो आई कैन स्टिल हैव लिटिल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म हेवान, जिसका ट्रेलर जो है आज रिलीज हो जाएगा. वेल देखते हैं कैसा है. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड ये वाली लाइन जो है जावेद अख्तर साहब की आपको याद है?
2: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है।
1: लेकिन एक सवाल मेरा आ रहा है कि आपको सिर्फ ख्वाब ही क्यों देखना है, आप ये शो क्यों नहीं देख सकते हैं? मैं बात कर रही हूँ जादू के बारे में, द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर। अगर आपको ऐसा ग्रेट सिनेमा और आइकॉनिक लिरिक्स पसंद है, ऑल यू गॉट टू डू इज मार्क अ कैलेंडर 28th of August 8:15 PM जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर। गगन मुद्गल इज कमिंग एट द जंक्शन दुबई। ऑल यू गॉट टू डू इज बुक योर टिकट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, और इससे पहले सबकी सब सोल्ड आउट हो जाए पहले ही बुक करवा लो। एंड अगर आपको जीतनी है, Stay tuned with me only on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: इट्स पास्ट 2 o'clock। खाने में क्या लाए हो बताओ मुझे 800-1062 पर कॉल करके।
1: Bollywood.

0: you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.0 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ लेकर आए हम बिग चेक इन, और इस बार जाने वाले हैं जर्मनी. सो इफ यू आर एक्साइटेड एंड आपको हमारे साथ जाना है, ऑल यू गॉट टू डू इज टाइप करो बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062 के WhatsApp मैसेज पर, WhatsApp नंबर पर, और आपके मैसेज को मैं रिप्लाई करूंगी, वन ऑफ देम को मैं कॉल करूंगी एंड हम खेलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Exclusively on Big 106.2.
2: देखते हैं आज कौन लकी निकलता है, लकी मैसेज किसका होता है. नंबर रिपीट कर देती हूँ, 0543091062. किसी एक को तो आज कॉल जाएगा. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: It's 37 degrees Celsius out there, लेकिन of course it feels hotter than the actual temperature. 50 degrees feel हो रहा है, humidity काफी ज्यादा है, around 65%. So stay hydrated.
5: Al-Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
7: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
8: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
9: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड चल रहा है बिग चेक इन टू जर्मनी. क्या आप रेडी हैं?
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Exclusively on Big 106.2.
1: Well, मेरे साथ है भूमिका. Hi भूमिका.
3: Yes, hi Avni. Hi Avni, how are you?
1: So पहले आप बताइए सबको कि आपको कॉल कैसे आया है. सबसे पहला स्टेप क्या किया था?
3: मैंने सबसे पहले WhatsApp पे मैसेज करा Big Check-in.
1: वेरी सिंपल. देखा कितना कितना सीधा सच्चा सिंपल सा एंट्री बेस है. ओके नाउ सेकेंड बेस. आपको शॉर्टलिस्ट होना है. आपको गेस करना है कि ये जो डायलॉग मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि वैसे ही ट्रिप का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में ये फिल्म, ये कैरेक्टर और ये डायलॉग आ ही जाता है. ये डायलॉग जो है कौन सी फिल्म का, यू हैव टू गेस. ओके यू रेडी भूमिका?
3: ओके
4: मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता.
1: Which film is this?
3: ये जवानी.
1: ओ यार भाई, तो आपने एक सेकंड नहीं लगाया गैस करने में. कितनी बार देखी है फिल्म?
3: Thank you. I think this is like the comfort movie I go for.
1: तभी इतनी बारी मूवी देख ली, तभी मन कर रहा है कि मैं जर्मनी चली जाऊँ किसी भी तरह, कभी
3: चली जाऊँ.
1: Okay, on a scale of 1 to 100, how excited are you?
3: More than 100, can I say?
1: Yeah. Okay.
3: Thank you.
1: So just like भूमिका, आपको करना क्या है, अगर आपको जाना है हमारे साथ जर्मनी बिग चेक इन में, आपको टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Big Traffic, brought to you by SelfDrive.ae.
1: ट्रैफिक बिल्डअप होना शुरू हो गया है मेजरली दुबई शारजा कॉरिडोर्स एंड E11, E311 ऑफ कोर्स, अल नहदा, अल कसेस एंड शारजा इंडस्ट्रियल एरियाज पर आपको स्लोअर स्ट्रेच मिलेगा, टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना है, एंड स्पेशली अगर आप अल खेल रोड से आ रहे हैं अराउंड अलकूज, बिजनेस वे एंड दुबई हिल्स एज वेल. अगर कहीं और फंसे हो, डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर.
0: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट. With zero penalty on early returns. Big 106.2. Big 106.2. Big 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड तमन्ना भाटिया एक और फिल्म में वापस आने वाली हैं. The common part is ये भी एक फोकलोर फैंटेसी फिल्म है. Remember her from
2: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से.
1: This was from Stree 2, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डांस नंबर ही था उनका इस फिल्म में. लेकिन दिस वन, ये फिल्म पूरी की पूरी उनकी होने वाली है. एंड जस्ट नॉट हर, इट्स सिद्धार्थ मल्होत्रा एज वेल. फिल्म का नाम है द विवान, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, एक हिंदी एक्शन फोकलोर फैंटेसी फिल्म जो कि रिलीज होने वाली है सितंबर 25th को. सिद्धार्थ मल्होत्रा तो मन्ना भाटिया के साथ. एंड मुझे जो कॉन्सेप्ट लगा है ना फिल्म का, इट्स सिमिलर कि यार आप वापस अपने पुराने विलेज में जाते हो, देखते हो कि यार एक अबैंडेंड फॉरेस्ट है, नहीं जाना चाहिए, वहाँ की मनगढ़ंत कहानियाँ पहले से हैं, लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो देखेंगे, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे. वेल 25th को पता लगेगा एग्जैक्टली क्या किया है इस फिल्म ने. ऑल्सो इसका टीजर जो है अभी रिलीज होने वाला है, देखते हैं कैसा होता है. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। इट्स पास 3 पीएम। लंच कर चुके हो तो बताओ क्या किया है, नहीं किया तो अभी भूख लगने वाली है।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी और मेरे साथ हैं हेलो
2: हेलो
1: कौन बात कर रहा है
2: जी मैं रहमत अली बात कर रहा हूँ
1: ठीक आपने लंच वंच कर लिया
2: जी अभी किया है थोड़ा एक घंटा हो गया
1: मैं आपको दो डिशेस दूंगी उन दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी है
2: जी सही है
1: लंच में क्या खाया आपने
2: बैंगन खाए हैं आज
1: बैंगन ठीक है तो आप मुझे बताइए बैंगन का भरता या आलू गोभी की सब्जी
2: बैंगन बैंगन का सब्जा
1: ठीक है बैंगन का भरता या गाजर आलू की सब्जी
2: गाजर आलू की सब्जी
1: गाजर आलू की सब्जी या भिंडी
2: भिंडी
1: भिंडी या कड़ी चावल
2: भिंडी
1: भिंडी या राजमा चावल
2: भिंडी
1: भिंडी या छोले चावल
2: छोले चावल
1: छोले चावल छोले चावल या छोले भटूरे
2: छोले चावल
1: छोले चावल ठीक है छोले चावल या गोइंग बैक टू बैंगन का भरता
2: नहीं नहीं छोले चावल
1: छोले चावल फॉर द विन वाह भाई वाह तो आप पता लग गया कि अगले दिन जो कल लंच होगा आपका उसमें छोले चावल बनेंगे है ना
2: ये कोई पता नहीं है अभी रूम में जो लड़का है ना वो पकाएगा जो भी उसका मन करेगा
1: तो जो पकाता है आपको पसंद आता है
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं
1: If you think you are a better foodie than Rehmat Ali, all you have to do is just call me 800-1062 या फिर आप DM भी कर सकते हैं 106.2 Big FM के पेज पर. Till then, keep listening to Big 106.2.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. लेकिन आपके साथ इस शो में कौन जाएगा वो आपको डिसाइड करना है. किस शो के बारे में बात कर रही हूँ मैं? 29th August, Zikr brings India's most celebrated storyteller Amandeep Khayal to Dubai for the very first time with his show जिसका नाम है धक धक. अब आपको अपनी धक धक के साथ जाना है, क्राइम इन पार्टनर के साथ जाना है या बेटर हाफ के साथ जाना है, that you decide. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स शेरो शायरी, बहुत ही सुंदर कहानियां एंड ऑफ कोर्स अ वार्म चाय एट जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो स्टार्ट्स एट 5:30 PM. टिकट्स 199 धीरे से शुरू हो रही हैं एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट. लेकिन अगर आपको फ्री में ये टिकट्स जीतनी है, करना क्या है? ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
1: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ट्रैक साथ का ट्रैक सॉन्ग का नाम था जल्ला बल्ला बाय द लेजेंड श्रेया घोषाल। एंड मैं सोच रही थी यार कि ये जो गाने हैं ना, ये ओजी गाने जो है, इनको ऐसे ही रहने देना चाहिए। रीमिक्स रिवाइज्ड छोड़ दो ना यार कईयों को।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 से मैं हूं अवनि आपके साथ। एंड मैं गानों की जो बात कर रही हूँ, मुझे रीमिक्स रिवाइज्ड वर्जन ना बहुत कम पसंद आते हैं। अब जो अगले दो आने वाले हैं, आप बताओ क्या आपको ये वाले पसंद है? अगेन इट्स 2.2 ऑफ कैरेक्टर ढीला। ये सलमान खान की मूवी थी एंड क्या हुक स्टेप था यार, मतलब अभी तक मुझे वो याद आता है। एंड ऑफ कोर्स दैट येलो स्कर्ट जो उसमें एक्ट्रेस ने डाली थी, दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट। वेलकम आ गई, वेलकम बैक आ गई, वेलकम टू द जंगल भी आ गई। वेल यू टेल मी, मैसेज करके 0543091062 पे, अगर आपको ये रिवाइज्ड रीमिक्स वर्जन ऑफ सॉन्ग्स पसंद है, 2.0s पसंद है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक्स्ट मी 0543091062। कमिंग अप नेक्स्ट 2.0 वर्जन्स।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:11।
2: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 39 degrees out there, but feels like of course 45. Humidity काफी हो चुकी है, इसीलिए आपको इतना high temperature लग रहा है. Humidity 61%.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: गांव के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
3: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. जब भी कोई मुझे मेरे कपड़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट करता ना, ओ वाओ यार तुम्हारी ये ड्रेस, तुम्हारा ये स्टाइल आज का बहुत अच्छा लग रहा है. All I think about is. लेकिन जब वो मुझे बोलते हैं, यहाँ तक ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तक ठीक है यार, लेकिन उसके बाद आप वो उठा के ले जाओगे, ये ऐसे कौन करता है यार. इतने अच्छे लग गए मेरे कपड़े भाई, आई डोंट नो किसको, मेरे फ्लैटमेट्स को या मेरे रूममेट को. भाई मेरे दो कपड़े उठाए गए यार कबर्ड में से, कैन इमेजिन. आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग ऑनेस्टली, ओके. मैंने हर जगह चेक किया है, मैंने अपनी हर जगह चेक किया है, लेजिट कोना कोना चेक किया है. एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मुझे वो याद है दैट वन चेक्ड ड्रेस आई हैव जो मैं रिसेंटली लेकर आई थी, टैग लगा था भाई उस पर, तब भी वो जहाँ थी वहाँ नहीं है. और मुझे पक्का श्योरिटी हो गई है कि यार ये उठाई गई है, ये मैंने मिसप्लेस नहीं करी. आई डोंट नो यार ये शेयरिंग में आप कैसे रहते हैं यार, प्लीज़ मुझे सिखाओ. अगर आपका पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, डू लेट मी नो 800-1062 पर, बिकॉज ये जो दुख है ना फिलहाल मेरे कपड़े खोने का, मुझसे सहा नहीं जा रहा है. अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, 800-1062 इज अ नंबर, डू कॉल मी. सहानुभूति भी चलेगी यार. टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
4: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
4: ये सुनो।
7: Congratulations सबसे पहले।
8: Thank you so much. I'm so excited for this.
7: शेर ने खून चख लिया है, so अब रिकी को कोई नहीं रोक सकता है। जर्मनी आप और मैं साथ मिलकर ना मन में तो जर्मनी ही पहुंच जाएंगे। चले जर्मनी?
8: Absolutely.
7: Okay. So. आप और मैं, we are running through green Bavarian meadows with the wind in your hair, yeah? Running through green Bavarian meadows with the wind in the hair. और जो डायलॉग सुनने को मिलता है वो ये वाला।
9: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं।
7: अब आपको बताना है, इससे मुश्किल सवाल जिंदगी में कभी नहीं किसी ने पूछा होगा। What is the correct answer? अभी अभी पैन यूरोप टूर से वापस आए रिकी। If you don't know the correct answer, then एल्प्स का चुल्लू भर बर्फ बताओ।
8: दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे।
7: Absolutely correct. Like I said, beginner's luck. It is, not going to be so simple in the days to come. But Ricky, congratulations. Your name goes into the draw and you're one step closer to winning that solo trip to Germany.
4: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: E11 shrinks at Rupert, aapko traffic mil sakta hai, particularly around the business bay, downtown and interchange areas. E311 shrink Mohammed bin Zayed road par bhi aapko busy traffic mil dega, especially if you're going towards Dubai South and Jabal Ali side. Agar aap kahin aur phase ho traffic mein, do let me know. 800-1062 is the number.
4: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
2: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: of the hour was brought to you by insurancemarket.ae. 30,000 Google reviews ke saath with a 4.8 star rating, built in UAE, trusted across UAE.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी, एंड जिसका फिलहाल हो रहा जाने का टाइम, पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन. ऑल यू गॉट टू डू इज फॉलो अस 106.2 बिग एफएम के पेज पर, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो अवनी यार के पेज पर, AVNIY AAA. मिलते हैं कल फिर से 1 से 5 बहुत सारी गॉसिप और बहुत सारे सितंबर फिल्म रिलीजेस के साथ. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. Action!

करें। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: अगर आज आपका हाल भी ऐसा है कि हंसा की तरह बार बार हाय मैं तो थक गई, तो बस ये लॉन्ग वीकेंड तक का सफर इज टोटली सफरिंग, बट थकान मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है गाना गाना. यस, एवरी सिंगल इवनिंग दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर बाथरूम सिंगर्स. अपना टैलेंट बाथरूम तक क्यों रखना, दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी मेरी. टाइम फॉर द कारियोकी.
1: कारियोकी
2: देखो, मेरी तरह आप भी सिर्फ गाना गाने का शौक रखते हो. इट डजंट मैटर किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आपको शौक होना चाहिए. देन दिस इज इट. आज शाम आपका ट्रैक इज अ वेरी पॉपुलर गाना फ्रॉम अ 90s की मूवी राशि की. ये फिल्म है

एसपी सर की आवाज है, बट ये गाना मैं आपकी आवाज में सुनना चाहती हूँ. एंड आई थिंक ऑलरेडी अ लॉट ऑफ यू हैव गेस्ड द सॉन्ग. इफ यू हैव, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी आर कैरियोकिंग राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: वैसे मेरे गले में काफी खराश है, बट आपका गला अगर साफ है और आप गाना गाना चाहते हैं, doesn't matter आए या ना आए, then this is it. We are karaokeing here, keeping you company. मैं हूँ मानसी. Before we get into the long weekend, I'm sure the week is very very long for you. फिलहाल समीरा, hi.
2: Hi.
1: How are you? Hi hi. समीरा भी बहुत थकी हुई है मेरी तरह, है ना?
2: Actually, I'm driving right now, so that's why.
1: Oh, very good. Concentrate there. Concentrate. फिलहाल समीरा, what do you do? Generational shaper. You're a generational shaper. What plans for the long weekend?
2: Right now, no plans.
1: Very nice. Kyun aisa?
2: Schools are going to start, so we are going to prep for school.
1: बैक टू स्कूल की तैयारियां चल रही हैं. टिफिन बनेगा मंडे से, है ना? कौन सा ऐसा टिफिन है जो बच्चे लेकर आ जाते हैं वापस खाते नहीं है?
2: मोस्टली वेजिटेबल.
1: फिर आप डांटती नहीं उन्हें?
2: डांट तो हर 5 मिनट में पड़ती है.
1: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. डांट तो हर 5 मिनट में पड़ती है. वेलकम टू देसी पेरेंटिंग. फिलहाल बच्चों को डांटते डांटते समीरा आप गाना गाते हो?
2: गाना गाती नहीं हूँ, बट आई वाज लाइक
1: शौक होना चाहिए. आए या ना आए, इट्स ओके. बहुत अच्छी है, आज तक किसी ने नहीं बोला. आज बहुत सारे फैंस आपको मिलने वाले हैं आफ्टर यू सिंग दिस सॉन्ग.
0: Karaoke.
1: All right, Samira, this is your track. हाँ जी.
2: पहला प्यार है,
1: कितना शर्मा के गाया है, बट अच्छा गाया है यार. पहला पहला प्यार है.
2: थैंक यू.
1: तो ये जो बच्चे हैं जो सब्जी नहीं खाते हैं, डांट खाते हैं, इनके पापा ने कब गाया था गाना आपके लिए?
2: गाया था जब हम पहली
1: फर्स्ट लाइट पे, फर्स्ट टाइम पे दोस्तों
2: के सामने
1: गाना पड़ा उनको. आज घर में एंट्री इसी गाने को गाते गाते करना. पहला पहला प्यार
2: डेफिनेटली.
1: चलो, हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.
2: ओके, थैंक यू, बाय बाय.
1: ये कारियोकी की, लाइक आई सेड, अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज्यादा थक गए हैं तो थकान दूर करते हैं गाने गाते हैं. राइट हियर ऑन बिग 106.2. इफ आप भी बाथरूम सिंगर हैं, देन 0543091062 इज द नंबर टू व्हाट्सएप मी.
0: कारियोकी Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill, Mansi, and of course we are karaokeing here while you're stuck in traffic jam. We jam and someone with a very, very nice voice. महेंद्र हाय
2: हाय हाउ यू मानसी
1: यार मेरा मूड ना थोड़ा एमी से था तबीयत ठीक नहीं है आपकी आवाज सुन के ना इतना अच्छा लग रहा है दिल का टेलीफोन ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग
2: यू गॉट एन अमेजिंग वॉइस टू
1: थैंक यू सो मच सो महेंद्र कितनी लड़कियों ने बोला है कि आवाज अच्छी है आपकी
2: आई डोंट थिंक एनीवन अपार्ट फ्रॉम माय वाइफ
1: ये लो सारे टेलीफोन जो है व्यस्त हो गए हैं यहां पे अब महेंद्र I am very, very sure yeah. that you're a fantastic singer.
2: I don't think so.
1: I don't doubt that.
2: Oh, right. Great to know that.
1: हाँ, तो आपने कितनी लड़कियों के लिए अपनी वाइफ के साथ साथ गाने गाए कभी?
2: मेरी वाइफ कंप्लेन करती रहती है, I have not even sang for her. घर पे she's just got a new karaoke machine from Amazon. तो हमने बोला चलो ठीक है, let's have some karaoke night. तो बच्चे भी join करते हैं, you know, कभी-कभी.
1: इन्होंने मतलब सब बता दिया है मुझे कि मानसी यहाँ कोई स्कोप नहीं है, बच्चे भी हैं एंड वाइफ भी है, तो अब तुम सीधा जो है ट्रैक बजाओ, मैं गाता हूँ अपनी वाइफ के लिए. ठीक है महेंद्र, here's your track and I'm very excited for this.
2: All right, great.
0: Karaoke.
1: हाँ जी.
2: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जाने के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है.
1: ओए होए होए, मैंने कहा था कि ये तो ऑफ कोर्स अच्छा गाएंगे. यू आर फैंटास्टिक एंड यू नो दैट राइट?
2: ओ आई रियली डोंट नो.
1: प्लीज जस्ट फेचिंग कॉम्प्लीमेंट्स. सो तो महेंद्र, कोई सुरेंद्र वीरेंद्र ऐसा भाई है आपका गाने वाला जो सिंगल हो?
2: कोई भी नहीं है.
1: ये क्या है, अच्छे आवाज वाले अच्छे गाने वाले लड़के जो है वो चले जाते हैं, बचते ही नहीं है मार्केट में. फिलहाल आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर पहला प्यार. How old were you?
2: Mera pehla pyar, yeah. I mean, so talking about the very first love, I was, I think, probably, I don't know, 15 or 16, I got proposed. She is my first and first girlfriend, and she proposed me. And school mein se, to she saw me, she loved my eyes, because eyes bahut hi alag hai meri. It's green color. So then when she saw me, she just, you know, I mean, like, fell for me.
1: Wow.
2: So then she proposed me, she asked me out, so that was my first thing, you know.
1: But where is she now? Is she blocked?
2: No.
1: अक्सर आपके जो पहले प्यार होते हैं आपके सोशल मीडिया की ब्लॉक लिस्ट में ही मिलते हैं.
2: But, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया.
1: ये तो होता ही, अगर प्यार सच्चा है तो ब्लॉक करना जरूरी है. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग महेंद्र एंड यू सैंग ब्यूटीफुली.
2: थैंक यू. बाय.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:09।
2: बॉलीवुड।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: गाना फुल वॉल्यूम पे आपकी ब्रांड न्यू जिटार में।
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: गेड़ी और गाने का मजा अच्छी गाड़ी में आता है। ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी दिस समर विद जिटार्स अनबीटेबल ऑफर्स, वेट ऑन देम और 0% इंटरेस्ट। फ्री सर्विस पैकेज आल्सो इंक्लूडेड, प्लस 1,000,000 किलोमीटर की वारंटी है। ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 966 दिरहम्स पर मंथ। एग्जैक्टली 966 दिरहम्स पर मंथ। विजिट जिटार शोरूम्स अक्रॉस अबू धाबी, दुबई, अजमान और अलेन आज ही। जिटार यूएई पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप होल्ड। Terms and conditions do apply.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Honestly, मैं बहुत anti social हूँ. For me, long weekends are just about being home. But this long weekend, I'm very excited because my favorite Amandeep Khayal is coming to Dubai for the very first time. जिक्र आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया के celebrated storyteller Amandeep Khayal to Dubai for the very first time with his show Dhak Dhak. And if you love poetry, soul stirring stories, old school romance and garam garam chai, then you have to be here. This is happening at the Gems Al Barsha National School on the 29th of August. And tickets jo hai aapko exclusively milenge on district for 199 dirhams, including your high tea and free parking. Vaise tickets yahan jeetne ka bhi mauka aapke paas, just like Samiksha. Hi.
2: Hi.
1: How are you, Samiksha?
2: I'm good. What about you?
1: I am okay. A little under the weather, but theek thaak hoon main filhaal. Mujhe ek baat batao, sachcha pyar mila hai, nahi mila hai?
2: हाँ, lately मिल गया.
1: Lately मिल गया. She's not very sure.
2: नहीं, मिल गया, शादी भी हो गई.
1: फिर तो confidence से बोलूँ ना समीक्षा के, हाँ मिल गया है, शादी भी हो गई है. तो दोनों में से ज्यादा romantic कौन है?
2: मैं, of course.
1: अच्छा, तो शेरो शायरी पोएट्री वगैरह,
2: मतलब कुछ बोलने भी जाओ तो वो बोलेगा करके बस हो गया भाई, बस बस समझ गया मैं.
1: अच्छा, तो ऐसे ऐसे शख्स से जो ऐसी आर्टिस्टिक रोमांस में बिलीव नहीं करता, आपको प्यार कैसे हुआ?
2: हो गया, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर. वो शायद मैं ज्यादा बड़बड़ी हूँ, तो हो गया.
1: यू आर द स्टॉर्म टू हिज काम.
2: यस.
1: दिन में आई लव यू कौन ज्यादा बोलता है?
2: दिन में तो नहीं होता
1: है,
2: कभी कभार. हाँ, दिन में तो नहीं होता है, कभी कभार, मतलब
1: साल में दो बार
2: बोला.

0: अच्छा, कितने महीने कितने साल हुए शादी को?
1: 4 महीने।
0: 4 months के बाद दिन में एक बार भी मियां बीवी अगर आई लव यू ना बोले तो अगली बार मुझसे मत बोलना कि मानसी शादी करना बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मुझे एक बात बताओ, ये जो आवाज आपने सुनी है
2: शायद कभी न कह सकूं,
0: ये किसकी आवाज है?
1: अरिजीत सिंह।
0: अरिजीत सिंह की आवाज है। फिलहाल आपकी जिंदगी में थोड़ा सा रोमांस घोलते हैं, अपने पतिदेव को लेकर आइएगा। 2 tickets दे रही हूँ मैं आपको फॉर अमनदीप ख्याल शो हियर इन दुबई। आई विल बी देयर, मुझे मिलवाना जरूर है समीक्षा।
1: पक्का पक्का, श्योर श्योर, आई डू दैट।
0: अमनदीप के ख्याल उनके अंदर हम फीड करेंगे सो दैट वो दिन में कम से कम 6 बार शायराना अंदाज में आई लव यू बोले।
1: थैंक यू,
0: यू मोस्ट वेलकम, आई विल सी यू ऑन सैटरडे।
1: चलो बाय
0: बाय बाय,
1: थैंक यू सो मच, बाय
0: बाय।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है. यस, इट्स टाइम टू चेक इन. दिस आर गिविंग यू अ चांस शॉर्टलिस्ट होने का. आप में से कोई एक जो है वो एक स्टेप और करीब हो जाएगा टू दिस फैंटास्टिक ट्रिप दैट वी आर टेकिंग टू जर्मनी. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू इट राइट नाउ. द लास्ट 5 मिनट्स फॉर यू टू रजिस्टर. व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना है. बिग चेक इन अपना नाम राइट नाउ 0543091062. पब्लिक डिमांड पर धीरे नंबर बोलती हूँ, 0543091062.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक द टाइम राइट नाउ 7:07, टाइम टू ट्रैवल विद टीम विक्टर जर्मनी।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800 Motors. Conditions apply.
1: In the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, Jet Or UAE, part of Elite Group Holding, and Dabur Pudin Hara.
3: Insuremarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. Insuremarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 3 बारी रिफ्रेश करा है कि ये आंखों का धोखा तो नहीं, बट फिलहाल टेम्परेचर स्टिल 37, लो जाएगा अराउंड 35, वेरी वेरी ह्यूमिड टुडे, 68% पर फिलहाल ह्यूमिडिटी।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: A circuit. अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Get ready for school with Self-Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Extremely slow moving traffic इस वक्त अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं, वर्का से मर्डिफ, मर्डिफ से मोहेसना, फिलहाल इट्स शोइंग अ 45 मिनट डिले। देयर इज एक्सट्रीम ट्रैफिक टुडे, सुबह से यही हाल है। फेस्टिवल सिटी के पास अगेन इट इज बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ सिचुएशन। उमरमूल, रशदिया, उद मैथा, करामा, मनकोल, फहीदी, ऑल पैक्ड। शेख जायद पे फिलहाल 40 मिनट डिले, हैवी ट्रैफिक नियर दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, प्लस इफ यू हेडेड टुवर्ड्स अलकूज फर्स्ट, ऑल द वे टुवर्ड्स अलकूज 3, आपको बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक उस पूरे रूट पे मिलेगा। इसके अलावा इफ यू स्टक समवेयर, लेट मी नो कहां ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि हेसर स्ट्रीट पे भी इफ यू गोइंग टुवर्ड्स जेवीटी आपको ट्रैफिक मिलेगा 800-1062 पर।
6: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट विद जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स। बिग 106.2। बिग

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Alright, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था तो आज का मौका गया, but don't worry, throughout the day with Sid, with Avni, you get a chance shortlist होने का for this fantastic trip that we are taking to Germany. फिलहाल randomizer ने ढूंढ निकाला है अभिषेक को. Hi अभिषेक, good evening.
2: Hi, very good evening. How are you?
1: I am good. कैसा रहा आपका Tuesday?
2: Tuesday थोड़ा hectic था, बहुत traffic था road पे.
1: I know, आज बहुत ज़्यादा traffic है.
2: Yes, towards Dubai and Sharjah, the 311 was completely packed. And it took around like 2 hours me to reach.
1: I know. आपको तो 100% vitamin Germany की ज़रूरत है. गए हो Germany पहले?
2: नहीं, कभी नहीं.
1: When was the last time आपने छुट्टी ली थी कि बस ये दुबई शहर जाके ट्रैफिक में ही सारी ज़िंदगी निकले जा रही है?
2: Yes, you can say that.
1: क्यों आप छुट्टी पे क्यों नहीं जाते हैं अभिषेक?
2: Wait कर रहे थे. Time नहीं मिलता
1: है. हाँ, wait कर रहे थे कि free की trip मिले.
2: I hope मिल जाए.
1: I was just talking to a colleague today. I said one thing I love is anything that is free. And ये तो trip है to Germany, तो ये तो बनता है.
2: बिल्कुल.
1: तो चलो जी, देखते हैं कि अभिषेक का आज शाम shortlist हो पाते हैं कि नहीं. And it's time to check in.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Travel partner AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: All right, Abhishek, अभी शारजा दुबई के ट्रैफिक से बाहर निकलो. हम जर्मनी में हैं.
2: Okay.
1: We are walking under the amber trees of the Black Forest during the Golden Hour.
2: And Golden Hour.
1: Background में ये play हो रहा है. तुम बाइक पे, तुम्हारे पीछे मैं, मतलब मुझे बोलने भी नहीं दिया. मैं इतना अच्छा माहौल बना रही थी कि अभिषेक बाइक पे उसके पीछे. बिल्कुल सही जवाब. जब तक है जान, जरा थोड़ा सा रोमांस तो लेकर आओ ना इसमें.
2: जब तक है जान, जब तक है जान.
1: ओह, कंग्रेचुलेशंस, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं टू दिस फैंटास्टिक ट्रिप दैट वी आर टेकिंग टू जर्मनी. वन स्टेप क्लोज. अब बस मैनिफेस्ट करो, दुआएं करो कि अगला कॉल आए. मेरा तो यही हो कि अभिषेक, ये रिक्रिएट करने का मौका आ गया है जर्मनी में. आप और मैं बस बाइक पर. है लाइसेंस बाइक का?
2: इंटरनेशनली नहीं है.
1: कोई बात नहीं, हम ऐसी प्रिटेंड बाइक जो है वो बना लेंगे. आप बस तैयारियां करो. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड कंग्रेचुलेशंस.
2: थैंक यू.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big.

फॉर द 28th ऑफ ऑगस्ट लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे को छुट्टी है एंड फ्राइडे जादू होने वाला है. गगन मुद्गल इज कमिंग टू द जंक्शन दुबई विद जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर एंड इट इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल नाइट. द शो स्टार्ट एट 8:15 PM. गेट योर टिकट्स नाउ बिफोर दे आर सोल्ड आउट. इन फैक्ट आई एम ऑल्सो गिविंग यू चांस राइट नाउ टू विन टिकट्स एंड गो एंड विटनेस द मैजिक जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर बाय नन अदर दैन गगन मुद्गल. वेरी वेरी सिंपल, मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ. ये जावेद साहब का ही लिखा हुआ गाना है.

0: आपने सिंपली मुझे ये बताना है ये जो गाना है ये किस मूवी में आपने सुना था। अक्षय कुमार कटरीना कैफ की मूवी है। आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी सिंपल। जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062। यू कैन ऑल्सो सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062 पर।
1: बिग 106.2।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 डिग्रीज है, स्टिल लो जाएगा अराउंड 35, ह्यूमिडिटी फिलहाल 62% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2 सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: I know it's a Tuesday, but we are getting into a long weekend and we are making plans for Friday. This Friday, if you love cinema, you love iconic lyrics, you have to clear your calendar for the 28th of August. Gagan Mudgal is coming to the Junction with Jadu, the life of Javed Akhtar, and bahut kamal hone wala hai ye show. 8:15 baje jo hai shuru hoga, and you can get your tickets right now. District par available hai before they are sold out. Filhal maine bhi aapko mauka diya tha to win invites, to win tickets, and I played you a gana here.
3: Main jahan rahun,
2: oye oye, jo Javed sahab ki hi kalam se likha gaya hai. And right now I've got Azhar. Azhar, kaun si movie thi ye?
4: ये नमस्ते लंदन.
2: एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या कमाल गाना लिखा है ना, मैं जहाँ रहूँ कहीं भी रहूँ.
4: बेहतरीन.
2: तेरी याद साथ है.
4: इक्वली वेल संग बाय राहत.
2: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मैं कभी कभार सोचती हूँ लिरिसिस्ट जो है इनके ख्याल आते हैं कहाँ से, मतलब इतने खूबसूरत गाने लिखते हैं ये.
4: सीरियसली आर्टिस्ट लाइक इन जनरल सो इंस्पायरिंग, मतलब टू पेन डाउन सच थॉट, इट्स इनक्रेडिबल.
2: आप लिखते हो, गाते हो, पेंटिंग करते हो?
4: मैं सिर्फ सुनता हूँ.
2: देखो आर्टिस्ट को भी तो कदरदान की जरूरत है ना, वरना हुनर का क्या काम. तो आपको बहुत मजा आने वाला है ऑन फ्राइडे. अगर आप सुनने का शौक रखते हैं तो गगन जो है उनकी आवाज माइंड ब्लोइंग है, एंड दिस शो इज गोना बी इनक्रेडिबल इफ यू आर फैन ऑफ जावेद साहब. सो कंग्रेचुलेशंस अजहर, दो टिकट्स जो है वो आपके हुए. कपल इनवाइट्स, हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन दिस फ्राइडे. दिस इज हैपनिंग एट द जंक्शन.
4: Thank you so much, Mansi. Thank you so much. Have a great evening.
2: You too. Bye.
4: Thank you. Bye-bye.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
5: Kuch kahaniya सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिंस एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
0: बिग 106.2।

0: मेरे बॉयफ्रेंड से वुलू वुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नहीं मैं किसी की और अब शायद बनना भी नहीं चाहती हूँ।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ऑनेस्टली जितने ट्रैफिक सिग्नल आपने नहीं तोड़े होंगे उतना लड़कों ने मेरा दिल तोड़ा है, तो मेरा तो विश्वास उठ गया है। फिलहाल यहाँ से मेरा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, मैं आपसे मिलूंगी कल। एंड काउंटडाउन हैज बिगन द लॉन्ग वीकेंड। आई नो इट्स जस्ट अ फ्राइडे की छुट्टी, बट स्टिल एनीथिंग एक्स्ट्रा इन लाइफ इज ऑलवेज वेलकम। फिलहाल आई एम ऑल्सो वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑन सोशल मीडिया, 106.2 बिग FM, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल, सो डू फॉलो अस देयर। यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग। हैव अ ग्रेट इवनिंग, आई विल सी यू टुमारो, लीविंग यू विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक। Oh,

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।
1: तेरी